जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलेना प छिगु जीवन या पला पला निपकीमा किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यमा अलेना पा छेगु जीवन या पला पला न्हे फुकीमा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

0: Johor Kips FM 98.3 MHz.
1: कार्यक्रम कलियुग टाइम, कलियुग टाइम.
2: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: 하셔야 네이브스 좋습니다.
1: 수태야 사리 천이세 사트 버지에 다가 스테이션 KIPS FM 98.3 MHz.
2: नेपाली पप गीतहरुको उतार चढाव कुन गीत कुन स्थानमा छ साथै नेपाली पप गीतहरुबाट भरपूर मनोरञ्जन लिन सुन्न नभुल्नु होला टिप्स मोस्ट वान्टेड टिप्स मोस्ट वान्टेड
3: हरेक शनिबार मध्याह्न 12 बजे आइतबार राति 8 बजे र मंगलबार बिहान 9 बजे
4: What's the secret to success?
5: Simple. Say yes to radio advertising.
4: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
5: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
4: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.

नेपाली पॉड फ्लैशबैक एवरी संडे एंड ट्यूसडे 10 p.m. थर्सडे 9 a.m. एंड सैटरडे 5 p.m.

0: FM 98.2 MHz.net.
1: केही नौलो
2: रोचक
1: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 FM मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
2: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 FM मा
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
4: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: 7장 어떻게
1: नेपाल भाषा या न्यायी पुसेचौं मेता
2: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: Sheeps FM 98.3 MHz. Your companion. Your companion.
1: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल साथ में सुन्नुहोस् नेपाली र हिंदी सुपरहिट गीतहरु मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे.
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.

0: Life-Changing Quotes. क्षमादानले विगत बदलन नसके पनि भविष्यलाई चाहिँ सुन्दर बनाउँछ। यो भनाई हो पॉल बोसको।
1: History of Rock.
2: Monday 3 p.m. Only on Keeps FM 98.3 MHz, your companion.
3: Raja Motiwa Motina Yewa Ni Pushi Changu Tukhe
4: Nepal Bhashaya Nyai Pushi Chong Meta
5: सुथेया 6:30 to 7 p.m. तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज।
6: स्टे कनेक्टेड विथ योर फेवरेट स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज।
7: जॉइन आवर कम्युनिटी ऑन फेसबुक फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल द म्यूजिक यू लव।
6: एंड डोंट स्टॉप देयर, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक टू। Search Keeps FM 98.3 MHz and hit that follow button today.
8: Does your computer UPS has no more backup time as before? Are you looking for battery replacement for your computer UPS? If yes, Battery Shop, New Kathmandu.

0: Waves FM 98.3 MHz.
1: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी.
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग. बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग.
3: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल.
2: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स एवरी संडे 9 PM, ट्यूसडे 6 PM.
4: पहला नशा पहला खुमार.
2: स्टेशन गिव्स FM 98.3 MHz.

0: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी।
1: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग, बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग।
2: दिल दियां गल्ला करांगे नाल नाल।
1: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स एवरी संडे 9 PM, ट्यूसडे 6 PM।
2: पहला नशा पहला खुमार।
1: स्टेशन गिव्स FM 98.3 मेगाहर्ट्ज।
2: नया प्यार
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
2: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: You can dance.
1: You can sing. All you gotta do is
2: just tune in.
1: KIPS FM 98.3 MHz, your companion.
3: The radio of new generation.
4: 아밀라이 순호스 www.kipsfm.com 마포드. Just tune in.
0: You can dance.
1: You can sing. All you gotta do is
2: just tune in.
1: KIPS FM 98.3 MHz, your companion.
3: The radio of new generation.
4: 아밀라이 순호스 www.kipsfm.com 마포드. Just tune in. Radio, 나야 generation 고.
1: Motorcycle battery easy exchange offer.
5: तपाईको पुरानो मोटरसाइकल ब्याट्रीहरू एक्सचेन्ज गरी नयाँ 48 महिनासम्म वारेन्टी भएका मेन्टेनेन्स फ्री मोटरसाइकल ब्याट्रीहरू लग्नुहोस्।
6: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
7: History of rock.
8: Here I am, rock you like a hurricane.
9: Monday 3 p.m. only on KIPS FM 98.3 MHz, your companion.